माता कद गीत है खोला खाडा खाडा बोरू उठ देने वा सो मिलन गीत है गायने कराने जब प्यार की से होता है चित्रपट लता मंगेशकर

मिलन गीत मधुमती चित्रपट गायनेकरण मोहम्मद राफी तामत में जाना प्रिय सुदुकालू चित्रपट वाय जयंती माला समग्र दिलीप कुमार तम मे चित्रपट रंग पैवे अभी तोरा गता ओबे इल्लीमानु मे गीत बहुत दिन क्लिया तिबुना मधुमती चित्रपट गीत गणना वक् ए अतरी मातोरागत वेडिमदिन किला तिबु गीत अभी दन सवंदेमु

मिलन गीत जब प्यार किसी से होता है चित्रपट दशम से हटे एक गीत में चित्रपट प्रदर्शन है उन्हें मोहम्मद राफी समग्र लता मंगेशकर तमाम में गीते गायने कराने सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम 1906 जब प्यार किसी से होता है उन मोहम्मद राफी में लता मंगेशकर

गीत गायन करे महेंद्र कपूर हमराज चित्रपटी एकदास नमस्य हेट हते वर्ष तमय चित्रपटे प्रदर्शन उने मिलन गीत लता मंगेशकर समग किशोर कुमार तम गायन करानी संगीत सपेवा एस डी बर्मन एकदास नमस्य हेट नामे आराधना चित्रपटी राजेश खन्ना समग शर्मिला ठाकुर तम मे चित्रपटे रंगपाने सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम द किशोर कुमार उन लता मंगेशकर फ्रॉम द फिल्म आराधना दे लीप नोइंस एंड नोन सेक्सिक राजेश खन्ना और शर्मिला ठाकुर हंट दीसन फिल्म की स्पील्ड म्यूजिक फ्रॉम एस डे बर्मन

0: मिलन गीतिया मोहम्मद राफी गायने कराने चित्रपटे दोस्त थी सौन दुम देंगे एक गीते तो जो नेक्स्ट लीड फ्रॉम मोहम्मद राफी
1: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को फिर

मिलन गीत मन्ना डे गायने कला श्री हार से विश्व चित्रपट नेक्स्ट लीड फॉर द फिल्म 300 स्वांसिक फॉर मंडा डे

दास नमस्य अनुनामी प्रदर्शनी उन ताल चित्रपटे में गीते ऐतुलत्तेनो गायने करने अलका याक्निक समग उदय नारायण में चित्रपटे रंगपानो अक्षय खन्ना समग ऐश्वर्या राय संगीत सपयाने ए आर रहमान पदराजने आनंद बाक्षिगे इस फिल्म लीप 1996 दी हाइसन ताल अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय हट हॉपट्रोल स्पील This lead was gesungen from Alka Yagnik und Udayit Narayan, Music von A.R. Rahman, Lyrics von Anand Bakshi. Taal se taal mila.

दशरम से हटे वसरे प्रदर्शनियों दिल अपना और प्रीत पराय चित्रपटे रंगपानवा मीना कुमारी राजकुमार ओम प्रकेश समग किशोर साहू संगीते सप्याने शंकर जाय किशन में गीते गायना करनवा लता मंगेशकर दिल अपना और प्रीत पराय लिफ्ट 1966 इन इंडिस किनोस हाउप्टोलॉगी स्पेल्ट मीना कुमारी उन राजकुमार म्यूजिक फोन शंकर जायकिशन उन दिस लीड फोन लता मंगेशकर।